0: हवस्त श्रोता, यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो ईश्वरीय आराधनाको कार्यक्रम भक्ति प्रभात। कलाकार ओम शरणको आवाजमा सजिएको मीठ सुमधुर भजनहरू। यसका साथै आजलाई भने भक्ति प्रभात कार्यक्रमको निर्धारित समय यही पूरा हुन्छ। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। तमाम श्रोताहरूले यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यो सुन्नुहोस् अब उसो बिहान 10:30 प्रसारण गरिने कार्यक्रम सम्बन्धित जानकारी। यस जानकारीको लगत्तैपछि यहाँहरूलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले प्रथम संस्कृत अनि हिन्दी समाचार। 7:05 लिएर आउनेछौ पुराना सदाबहार गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिज। 7:25 श्रोताहरूलाई आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ नेपाली समाचार। 7:35 लिएर आउनेछौ सूचना अनि विविध कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। यसरी 8:15 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार। त्यसपछि 8:30 आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवा सिलोङ केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ अंग्रेजी समाचार। बिहानको 8:35 लिएर आउनेछौ नेपाली गीतहरूको कार्यक्रम गीतिमाला पनि 9:00 सुनाउनेछौ यस केन्द्रबाट। मुख्य समाचार 9:05 कार्यक्रम चित्रांजलि अन्तर्गत सुनाउनेछौ पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। बिहान ठिक 10:00 सुनाउनेछौ यस केन्द्रबाट। मुख्य समाचार भने 10:05 श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन गराउन भने लिएर आउनेछौ कार्यक्रम ताजे तराने अन्तर्गत नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। श्रोता, हित थिए अब उसो आजको हाम्रो बिहान 10:30 प्रसारण गरिने कार्यक्रम सम्बन्धित जानकारी। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौ। समय बिहानको 6:55 भइसकेको छ र अबको केही क्षणमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले प्रथम संस्कृत अनि हिन्दी समाचार।
1: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्दझा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुम् सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 44,30,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमा रक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद् वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचिति भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि

0: राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता समय बिहानको 7:05 भइरहेको छ। अब प्रस्तुत छ गान्धी कथा, जसमा आज सुनाउँदैछौ गान्धीजी अनि आत्मनिर्भर भारत विषयमाथि एक चिन्तन हरिभक्त शर्माबाट।

0: हजुर श्रोता, यसैको साथ आज पनि कार्यक्रमबाट विदा लिने समय भइसकेको छ।
1: हजुर, भोलि बिहान फेरि यस्तै जानकारीहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछौ। आजलाई हामी विदा चाहन्छौ।
0: नमस्कार।
2: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो विविध जानकारी तथा मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। प्रिय श्रोता, समय यस बेला बिहानको 8 बजिसकेको छ र अब सुन्नुहोस् आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

0: टेररिज्म का शिचूट इज वन ऑफ द मोस्ट
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरू में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय

आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। जरिया तो आप जानते ही हैं 9868867 5 3। जी हाँ, 9 8 तो बस बता दू 9868867 5 3। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है मुझे अपने पसंद के गीत, और आप ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldaiardelhi@gmail.com पर। लेकिन ये याद रखिए, सिर्फ एक ही चीज काफी है, दोनों जगह पर मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, तो आप जिस भी जरिए मुझे अपनी बात कहें पहुंच जाएगी। कोशिश करिए एक ही मैसेज करें, ताकि बार बार आप ही के मैसेजेस में स्क्रॉल करती ना रह जाऊं, नए नामों को भी शामिल कर पाऊं। और इसके अलावा, क्योंकि नाम तो मैं एक ही बार लूंगी, भले आप 10 बार मैसेज कर दें, तो सिर्फ एक मैसेज करिए काफी है। और अब मैं आपको कुछ नामों को शामिल करके बता दूं कि किस किसने हमें मैसेज भेजे हैं। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ने मैसेज किया है। और मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने हमें मैसेज किया है। गांव खारियां ढाणी से, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया ने हमें मैसेज किया है। और हमें लिखा है गगन दीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका प्रशांत, प्रियम और वामिका, बेबी वामिका और वाणी ने पंजाब नवा शहर से, और अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीव्यम और हमें सभी ने लिखा है माल्यान सरथना मेरठ से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सान, आजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन का हमें सहारनपुर से मैसेज पहुंचा, लाल बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, मुझे लगता है ये दोबारा से मैसेज आया क्या मेरे पास, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू का छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज मिला है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रितेश और पूरे संघई परिवार का मैसेज हमें मिला है परभणी से। और हमें लिखा है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्नील और रक्षिता ने, सिद्धार्थ गुंडाने और अर्चना ताई गुंडाने, हीरमन शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने ने हमें लिखा है कहां से, अमरावती से। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु का मैसेज, और ये लिखा है हमें मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख, मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना ने सनावत मध्य प्रदेश से, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, मुकेश कश्यप और शीतल कश्यप ने दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने खरगोन एमपी से, और ये संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत, कमल और सभी ने लिखा है हमें पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर, पंजाब से। ये मैसेज हमें मिला है कहां से, देखें जरा, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने हमें मैसेज भेजा। और इसके अलावा चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और जमशेदपुर से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा का मैसेज भोपालगढ़ राजस्थान से, उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और पूरे परिवार का मैसेज बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें लिखा है नई दिल्ली जनकपुरी से, रमेश अरोड़ा बाजार सीताराम दिल्ली से लिख रहे हैं, और अनु पटजात्या ने मुंबई से हमें मैसेज भेजा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय का मैसेज, और तेलंगाना निजामाबाद से हमें लिखा है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना ने, और ये मैसेज हमें लिखा है कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान फारिया और ताहिरा ने, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल कुणाल का मैसेज हमें दादरी गेट भिवानी से मिला है। तो भाई, और मैसेजेस को भी जरूर शामिल करती चलूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्जेरिका क्रिस्टल वॉइस, और अगला गीत जो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी।

और डॉक्टर प्रियम थांदी ने, बेबी वामिका और वाणी थांदी के साथ नवा शहर पंजाब से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म धरती कहे पुकार के साथ, लता जी और मुकेश साहब की आवाज में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस है। आपके साथ 10:44:48 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं दिल का मेल बॉक्स के बहाने। अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और कुछ मैसेजेस को शामिल कर लेती हूं। तो हमारे पास मैसेज मिला है मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का, श्री गंगानगर राजस्थान से, और हमें लिखा है किसने, देखें जरा भाई, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओम प्रकाश टेकचंदानी ग्रेटर कैलाश दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से लिख रहे हैं अजीत कसाना के साथ। और इसके अलावा हमारे पास महेश अग्रवाल, मीरा अग्रवाल का बहादुरगढ़ से मैसेज, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं, हमें लिखा है ये मैसेज किसने, भाई आपके नाम बहुत ढूंढे नहीं मिलते, मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं, और सलीम अख्तर रेशमा बेगम का अलीगढ़ से मैसेज पहुंचा। साथ ही हमें लिखा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि नोकेलाल, और इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ भाटापारा से, रोशन लाल देवांगन, हेमलता देवांगन, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रिजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का राजस्थान से मैसेज, और राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार गांव फ्रांसी हिसार से, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और ईटा भाटिया का मैसेज, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत।

रावत का राजस्थान सीकर से मैसेज और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य चंडीगढ़, राहुल से चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, भाई पूरे लगता है कि पूरे कस्बे का आपने नाम लिख दिया है। कोशिश करिए कि एक ही मैसेज में इतनी जगह से नाम ना लिखें, क्योंकि हमें दिक्कत होती है समझने में कि कहां से मैसेज आया है। योगेश शर्मा फरीदाबाद से हमें लिख रहे हैं, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश, प्रणाली सर्वत सानवी और कल्पना का मैसेज हमें मिला है जाफराबाद से। और हमें लिखा ये किसने, तिलंगपुर कोटला से मधुबाला का मैसेज हमें मिला, विजय नारंग नन्हे पहलवान का बाजार सीताराम से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव का दिवेंदु भूषण संस्कृति पुरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज, और रवि लता प्रिया विनी का भिलाई से मैसेज। ये मैसेज हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का, रामदेवरा से दिनेश चौहान का, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज। और हमें लिखा है बांगड़ा सिवान बिहार से अकबर हुसैन ने और बाल बांगड़ा ने, ओके सिवान बिहार से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ हमें ओमकारिणी गुप्ता, शशि गुप्ता, ओमांशी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल कामे दादरी गेट भिवानी से मैसेज मिला, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान फैजान आबाद का मैसेज गंजुंडवाड़ा से, और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का मैसेज, और ये सीता कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का मैसेज, एकता कॉलोनी रोहतक से हमें लिखा है सुनील गायकवाड़, राजवीर, सुषमा और अनन्या ने, कहां से ये तो नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा हमें हेमा गुड़गांव से लिख रही हैं और सतप्रकाश सनोटिया रोहिणी से ये मैसेज, मास्टर किलू परवेज, बेगम इमरान अनास, राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें पहुंचा, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से मैसेज। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त रहा तो जरूर कोशिश रहेगी सभी को शामिल करने की। बेबी आलिया, आयान बाबू, नौशाद सलमानी का मैसेज हमें मिला है निसार सलमानी के साथ, कहां से, तेलीवाड़ा धनौरी से। और एक मैसेज और, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर अंसारी, मेहराज जहां आजाद नगर से हमें लिख रहे हैं, लक्सर हरिद्वार से। बाकी के मैसेजेस को भी कोशिश करूंगी शामिल करूं, फिलहाल एक गीत शामिल करती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है किसने, ये गीत हमें लिखा है इसकी फरमाइश हमें भेजी है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, और सुदामा नगर खंडवा से हमें लिखा है किसने, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋषु, मुकेश, जगताप ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत। फिल्म बातों बातों में और आशा जी और अमित कुमार की आवाज।

दीक्षा बाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और पूरे परिवार का मैसेज हमें बुंदेलखंड से पहुंचा है और अब मैं एक गीत शामिल कर लेती हूं। इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है, चलिए देख लेते हैं। ये गीत हमें लिखा है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने और इस गीत को सुनना चाहा है कस्बा गन्नौर यूपी से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत कंचन जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज में।

0: बड़ी चिंता करे।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit

जी हाँ, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 11:11 और 6 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, तस्वीर का ये सफर जिसमें हर दिन हम आपको किसी न किसी खूबसूरत

जगह की सैर पर लेकर चलते हैं। तो आज कहाँ ले चल रही हूँ बता दूँ। चलिए आज हम चलेंगे तेलंगाना के ऐतिहासिक शहर वारंगल घूमने के लिए। बेहतरीन जगह है ये। हैदराबाद से वीकेंड पर घूमने के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है और वारंगल में इतिहास, सांस्कृतिक जीवंतता, वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां और मनमोहक प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हैदराबाद से करीब करीब 148 किलोमीटर की दूरी पर है ये वारंगल शहर। देश के बाकी हिस्सों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक काकतीय शासनकाल के दौरान सत्ता का केंद्र रहा है वारंगल। अब एक धरोहर शहर है जहां अनगिनत दर्शनीय स्थल हैं और वारंगल किला, कुश महल ऐसी कई इमारतें हैं जो अतीत के निशान प्रदर्शित करती हैं। आज भी कहीं तो अतीत को आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर भी यहां पर मौजूद हैं जो आध्यात्मिक वातावरण से यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां के पर्यटन की, तो यहां का जो प्राकृतिक अनुभव है, जो पर्यटक यहां आकर प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, ये भी अपने आप में बहुत खास है। समृद्ध जीव जंतुओं और वनस्पतियों को देखने का मौका भी आपको यहां पर मिलेगा। झीलें, वन्य जीव अभयारण्य और मनमोहक चट्टानी संरचनाएं प्रकृति प्रेमियों को यकीनन अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता से भरपूर वारंगल पर्यटन प्रेमियों के लिए एक बहुत ही यादगार जगह है या पर्यटन है। और अतीत की भव्यता और प्रकृति की सुंदरता दोनों के बीच कुछ दिन बिताने के लिए अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो वारंगल से बेस्ट आपके लिए और कुछ तो नहीं मिलने वाला है। जल्दी से वारंगल की यात्रा आप प्लान कर सकते हैं अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं। सब कुछ बताऊंगी इस जगह के बारे में, लेकिन पहले ये बता दूं कि आप हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ तस्वीर के सफर में। वारंगल की यात्रा पर निकले हैं आज हम और आप। तेलंगाना का ये शहर, ऐतिहासिक शहर वारंगल, सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में, जुड़े रहिएगा। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इस सफर को इस गीत के साथ। और ये गीत जीवन मृत्यु फिल्म से रफी साहब और लता जी की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूँ और ड्रा भी कर रहा हूँ और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत, चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा

0: बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था, क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था, जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था। इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं, और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उल जुलूल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: जी हाँ, ऐसा कौन है जो आकाशवाणी से प्यार नहीं करता? आप भी तो करते हैं, तभी तो जुड़े रहते हैं हमारे साथ। इतना हम चाहे ब्रेक लें, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन आप कहीं नहीं जाते, आप हमेशा दिन में 24 घंटे, रात में, दिन में, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। फिलहाल 11:28:23 हो चुके हैं और बातें बहुत ज्यादा नहीं करूंगी। जल्दी से आपको बता दूं कि हम घूम रहे हैं वारंगल, और वारंगल तेलंगाना जो राज्य है, इसका जिला मुख्यालय है। ये राजधानी हैदराबाद से 148 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्कन पठार के पूर्वी भाग में बसा वारंगल शहर खासतौर से पहाड़ियों और अलग अलग प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं से बना है। भारत सरकार की विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत शहर को 12 विरासत शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। वारंगल को पहले ओरू गलू के नाम से जाना जाता था। ओरू का अर्थ होता है एक, और गलू का अर्थ है पत्थर या पहिया। ओरू गलू या ओरू कलू नाम से ये संकेत मिलता है कि वारंगल शहर एक ही पत्थर या पहाड़ी पर बसा हुआ है, और इसे टोलिनी, कोरनकुला, अक्षली नगरम और वोराकली नामों से भी जाना जाता था। रघुनाथ भास्कर द्वारा रचित साहित्यिक कृति अराबिन कोसम में इसका उल्लेख एक शिला नगरम के रूप में भी मिलता है। वारंगल का इतिहास 12वीं से 14वीं शताब्दी के काकतीय शासनकाल से जुड़ा है। काकतीय शासनकाल में शहर ने काफी तरक्की की। उस काल के स्थापत्य अवशेष वारंगल के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं, और इसी काल में वारंगल किला, हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर आदि जैसी प्रसिद्ध संरचनाओं का निर्माण भी हुआ था। काकतीय शासन के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय थे। काकतीय शासन का अंत हुआ 1323 में। वारंगल दिल्ली सल्तनत के अधीन आया और बाद में इस पर मुसुनुरी नायकों का कब्जा हुआ, जिन्होंने 50 सालों तक यहां शासन किया, और एक संधि के माध्यम से वारंगल बहमनी सल्तनत और आखिरकार गोलकोंडा सल्तनत के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना, और हालांकि राज्य के विभाजन के बाद वारंगल शहर तेलंगाना का हिस्सा बन गया। तो आज हम इस जगह की सैर पर निकले हैं और इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल आपको इंतजार है गीत का। तो चलिए एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस सफर में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और हम आज निकले हैं वारंगल की यात्रा पर। दोस्तों, वारंगल तेलंगाना में मौजूद एक खूबसूरत शहर है जहां घूमने के लिए आपको जरूर कभी ना कभी प्लान करना चाहिए। वारंगल में देखने के लिए बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको देखकर सचमुच आप यहां के इतिहास का, यहां की बहुत सारी कह सकते हैं कि अलग अलग चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध है अपने आप में ये शहर। वारंगल देखने अगर आप जाएं तो इसे पर्यटकों का अगर पसंदीदा शहर कहूं तो कई वजह हैं यहां पर, जिनकी वजह से ये यहां आने वालों के लिए काफी पसंद किया जाता है। किले से लेकर मंदिर, झीलें और अभयारण्य तक वारंगल में कई ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। वारंगल में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक हजार स्तंभ मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इस मंदिर में त्रिकुट लयम समर्पित है और ये भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा के लिए यहां पर जाना जाता है। ये मंदिर हमनकोंडा में स्थित ये मंदिर आज भी अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है और इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, जिसकी वजह से इसे श्री रुद्रदेव स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शहर के बाकी प्राचीन तीर्थ स्थलों में भद्रकाली मंदिर, समका सरलामा मंदिर और रामप्पा मंदिर, जिसे
1: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार दिउँसोको 11:40 भइसकेको छ। अब प्रस्तुत गर्नै लागिरहेका छौं कार्यक्रम नारी संसार।

0: आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बढ़िरहेका छौं। श्रोतागण, अब प्रस्तुत गर्नै लागिरहेका छौं हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम, जसमा आजको विषय छ विभक्ति भाग दुई। यस कार्यक्रमलाई संचालन गर्नुभएको छ हेमा महाजनले।
1: नमस्कार, मेरा नाम हेमा महाजन है। पिछली कक्षा में हमने विभक्ति एवं कारक की बहुत सी जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ अनमोल एवं अन्वेषणा, ये दो विद्यार्थी हैं। विभक्ति एवं कारक की पूर्ण जानकारी होने के बाद हम प्रश्न उत्तर द्वारा तुम लोगों की पुनरावृत्ति की परीक्षा लेंगे।
2: जी शिक्षिका जी।
1: तुम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ दोहराया है कि नहीं?
3: जी शिक्षिका जी, हमने दोहराया है।
1: ठीक है, तो हम अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। विभक्ति के सात प्रकार होते हैं, जो कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी हैं। विभक्ति के सात प्रकार होते हैं, जो कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी हैं। चलो अब तुम लोग दोहराओ विभक्ति के प्रकारों को।
3: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यह विभक्ति के सात प्रकार है।
1: प्रथमा विभक्ति है तो कारक कर्ता और विभक्ति चिन्ह ने, और इसका अर्थ है काम करने वाला। यदि विभक्ति द्वितीया है तो कारक कर्म होगा और इसका विभक्ति चिन्ह को, और अर्थ जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। फिर विभक्ति है तृतीया। तृतीया विभक्ति के साथ कारक करण और इसका विभक्ति चिन्ह से, के साथ के द्वारा।

0: और इसका अर्थ है जिसके द्वारा, अर्थात जिस साधन के द्वारा कर्ता काम कर रहा है। अब हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इस विभक्ति के चिन्ह के लिए या को है। जब किसी के लिए क्रिया की जाए तब वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, माँ ने कामिनी के लिए खाना बनाया या मदारी ने लोगों के लिए खेल दिखाया। यहाँ कामिनी जो एक है और लोग जो कि ज्यादा हैं, अर्थात बहुवचन है, इनके लिए क्रिया हो रही है। अब तुम लोग इन विभक्ति चिन्हों के साथ एक एक उदाहरण बताओ और समझाओ कि क्यों ये चतुर्थी विभक्ति है। पहले अन्वेषणा, तुम बोलो।
1: मैंने दीदी को खाना दिया। यहाँ दीदी को खाना दिया अर्थात दीदी के लिए क्रिया हो रही है। दीदी के साथ चतुर्थी विभक्ति है।
0: हाँ, एकदम सही। अब अनमोल, एक उदाहरण दो।
2: भैया मेरे लिए मिठाई लाओ। यहाँ मिठाई मेरे लिए लाई गई। इसमें मेरे लिए क्रिया हो रही है और मेरे में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग में लाई गई है।
0: बहुत अच्छे। अब आती है पंचमी विभक्ति, जिसे अपादान कारक से दर्शाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, परंतु यहाँ से का प्रयोग अलग होने के संदर्भ में किया जाता है। मतलब कोई चीज जब किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ों से, जो कि एक से अधिक है या बहुवचन में है, इनसे पत्ते अलग हो रहे हैं। और रूपा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में रूपा की कुत्ते से दूरी का वर्णन है। अब इस तरह के वाक्य जिनमें अलगाव या दूरी के बारे में बताया जाए, उनमें पंचमी विभक्ति ही प्रयुक्त होगी। यह सदैव ध्यान में रखना, ठीक है?
3: जी शिक्षिका जी।
0: तो अब तुम लोग एक एक वाक्य बनाओ जिनमें पंचमी विभक्ति है।
2: मेरी पाठशाला मेरे घर से पास ही है।
0: यहाँ पाठशाला की घर से दूरी के बारे में बात हो रही है, एवं घर के साथ पंचमी विभक्ति प्रयुक्त है।
1: तेज हवा ने रस्सी से कपड़े गिरा दिए।
0: ठीक। यहाँ हवा के कारण कपड़ों का रस्सी से अलगाव दर्शाया गया है। दोनों ही वाक्यों में पंचमी विभक्ति एवं कारक चिन्ह से का प्रयोग किया गया है। अब आती है षष्ठी विभक्ति, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री, तथा इसका कारक है संबंध, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। इस विभक्ति से हम अन्य पदों के संबंध को बता सकते हैं। जिस प्रकार, यह पुस्तक मेरी है, श्याम की बस 5 बजे की है। यहाँ पुस्तक जो मेरी है के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, जिससे हमें पुस्तक का एवं मेरा संबंध पता चलता है। उसी प्रकार श्याम की बस 5 बजे की है। यहाँ बस एवं श्याम का संबंध पता चलता है, जिसमें कि कारक चिन्ह प्रयुक्त है श्याम की, तथा षष्ठी विभक्ति है। अब तुम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ।
1: यह मेरी माँ की साड़ी है।
0: यहाँ साड़ी एवं माँ के बीच का संबंध हमें पता चलता है कि साड़ी माँ की है। विभक्ति चिन्ह की है तथा षष्ठी विभक्ति माँ के साथ लगी हुई है।
2: बच्चे बगीचे से फूल तोड़ रहे हैं।
0: यहाँ बच्चों एवं बगीचे के मध्य का संबंध से विभक्ति चिन्ह से

0: समझ आता है एवं बगीचे के साथ षष्ठी विभक्ति है। आशा करती हूँ कि तुम लोग अब तक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग कब करना चाहिए समझ गए होंगे।
1: जी शिक्षिका जी, हमें समझ में आ गया।
0: अच्छा, फिर अंत में हम सारी चीजें पुनः एक बार देखेंगे। अभी हम अंतिम विभक्ति जो कि सप्तमी है इसे समझते हैं। तो सप्तमी विभक्ति के लिए कारक है अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। ये हमें क्रिया के आधार के बारे में बताते हैं। जैसे वे लोग गांव में रहते हैं, यहाँ उन लोगों का रहने का आधार गांव है, जो कि में विभक्ति चिन्ह से स्पष्ट होता है। गांव के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर वह भूमि पर सोता है। वह भूमि पर सोता है, इस वाक्य में उसका सोना भूमि पर आधारित है। पर विभक्ति चिन्ह इसकी जानकारी देता है। भूमि के साथ सप्तमी विभक्ति संलग्न है। यह समझा?
1: जी शिक्षिका जी।
0: क्या तुम इसका उदाहरण दे सकती हो?
1: जी शिक्षिका जी।
0: अनमोल,
2: सोनू कुर्सी पर बैठा है।
0: यहाँ सोनू के बैठने का आधार कुर्सी है, जो पर विभक्ति चिन्ह से पता चलता है। कुर्सी में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है?
1: जी शिक्षिका जी।
0: अन्वेषणा,
3: टोकरी में आम है।
0: आम टोकरी में है, जहाँ में विभक्ति चिन्ह हमें यह जानकारी देता है टोकरी सप्तमी विभक्ति के साथ है। यहाँ हमने सात विभक्तियाँ देखी। अब हम देखेंगे संस्कृत में राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है, जिसमें प्रथमा से संबोधन तक की सारी विभक्तियाँ सम्मिलित हैं। श्लोक इस प्रकार है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः, रामात् नास्ति परायरं, परतरं रामस्य दासोस्यं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम मामुद्वरः। श्री राम रक्षा स्तोत्र में राम 8 बार आता है और हर बार एक अलग विभक्ति में, जो कि आश्चर्यजनक रूप से अपने क्रम अनुसार ही है। जैसे प्रथमा रामो, यह रामः, द्वितीया रामम, तृतीया रामेण, जहां राम के द्वारा बताया गया है, चतुर्थी रामाय, राम के लिए, पंचमी रामात, राम से, यहां पृथक के भाव में, षष्ठी रामस्य, राम का, सप्तमी रामे, राम में, संबोधन हे राम। इस श्लोक की यही विशेषता है कि इसमें राम के 8 रूप अलग अलग विभक्तियों में क्रम के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। विभक्तियों के ज्ञान से अनुवाद तथा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में हमें सहायता मिलती है। संज्ञा एवं सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती है। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। अब मैं तुम लोगों से कारक एवं विभक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। अनमोल, विभक्ति कितने प्रकार की होती है?
2: 7।
0: अन्वेषणा, विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं?
3: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी।
0: अनमोल, विभक्ति किसे कहते हैं?
2: जो कारक एवं वचन विशेष का बोध

0: कराए उसे विभक्ति कहते हैं।
1: अन्वेषणा, और अन्य शब्दों में विभक्ति को परिभाषित करो।
2: जैसे जिसके द्वारा कारकों एवं संज्ञाओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं।
1: बहुत अच्छे। अनमोल, पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक एवं विभक्ति चिन्ह आते हैं?
0: अपादान कारक एवं से अलग होने के संबंध में विभक्ति चिन्ह।
1: ठीक। अब अनमोल, फिर तुम ही बताओ खड़ी बोली का क्या अर्थ है?
0: खड़ी बोली का अर्थ है दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली सामान्य बोल चाल की भाषा, जो कि व्याकरण की दृष्टि से इतनी सटीक नहीं होती है।
1: हाँ, जैसे मुझे, तुझे, इन्हें इत्यादि। अन्वेषणा, किस विभक्ति में कारक करण होता है?
2: तृतीय विभक्ति में।
1: बहुत अच्छा। अब तुम लोगों को विभक्ति के बारे में काफी जानकारी हो गई है। तुम लोग किसी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम एवं संख्याओं के विभक्ति के रूप बता सकते हो।
0: जी शिक्षिका जी।
1: तुम लोगों को धन्यवाद। अब इसे दोहराते रहना, जिससे भविष्य में तुम्हें व्याकरण से संबंधित प्रश्न सुलझाने में आसानी हो।
0: नमस्कार।
3: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्नुभयो हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम। विषय थियो विभक्ति भाग दुई। यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभएको थियो हेमा महाजनले। श्रोतागण, अब एकैछन मनोरञ्जन गरौं कलाकार भक्तराज आचार्यको स्वरमा सजिएको यो आधुनिक गीत सुनेर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है।
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक

0: देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेल

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो महाकाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
5: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
6: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग
9: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपराह्नको 1:30 भइरहेको छ। अबको केही समय यहाँहरूलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाप्रसार गरी सुनाउन लागिरहेका छौं विविध भारती सेवाका कार्यक्रमहरू। त कृपया केही क्षण प्रतीक्षा सोच्नुहोला।

वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूं तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहां भी घूमा हूं, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्छक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा, मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहां पर क्या क्या मिलता है, यहां पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीजों को हाथों से चुनना, परखना और चीजों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीजें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, और नई चीजों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहां जाकर जरूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और जरूर आप पढ़ें और जरूर यहां पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाजार अजमेर के डिग्गी बाजार, नाला बाजार, दरगाह बाजार, नया बाजार और भिलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाजार है, सांगानेर बाजार, पवन बाजार, आजाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहां पर भी मैं घूमी जरूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियां मिल रही हमें।

हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक हाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है, जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है, जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहां पर जाकर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुंच रहे। चलिए, आप चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूं।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहां पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहां पर मिलते हैं और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहां छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं। स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूं, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूं मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फेहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mohapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and adjoining areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 metre at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रूपये से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
5: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरू में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार हिन्दी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
6: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
2: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
2: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरूष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: বগিজানে খোলা জোহলা।
1: শ্রোতাগণ, यो अघिल्लो लोकगीत सुनौ कलाकार विमला प्रधान अनि साथीहरुको आवाजमा।

0: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपराह्नको 3 बज्नै लागेको छ। अबको केही क्षणमा यहाँहरूलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाप्रसार गरी सुनाउन लागिरहेका छौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा राष्ट्रिय समाचार। त्यसपछि सुन्नुहुनेछ एफएम गोल्डका कार्यक्रमहरू।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
2: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का पीएलआई दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और मन भावन में आपके साथ हूं मैं आपकी हमसफर हेमा। दोस्तों, हम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान हो, यानी कितने भी सक्षम हो, केपेबल हो, बावजूद उसके जब कोई और हमारी कोई इच्छा पूरी करता है, हमारे लिए कुछ करता है, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है ना। बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास वो होता है और ये एहसास हमेशा हमारे साथ भी रहता है। और जब कभी भी उस बात को हम फ्यूचर में याद भी करते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। उस शख्स को याद कर जैसे जीवन में हमें सार्थक सा लगता है ना। शायद इसीलिए भी इस प्रोग्राम का इंतजार आपको और हमें दोनों को रहता है, क्योंकि आप हमसे कुछ कहते हैं और हम उस बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता और पुख्ता होता रहता है। तो मन भावन में आज भी आपकी फरमाइश का बहुत बहुत स्वागत है, जिसे पूरा करने के लिए एफएम गोल्ड इस वक्त बिल्कुल तैयार है शाम 4 बजे तक। तो अपने पसंदीदा गीत के बोल लिखिए फिल्म के नाम के साथ, और कुछ आप लिखना चाहें उस गीत से जुड़ा वो भी बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ईमेल कीजिए हमें अपनी फरमाइश, ईमेल आईडी है हमारा, नोट करें, fmgoldairdelhi@gmail.com, fmgoldairdelhi@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868687853।

ये वादा रहा कि जितने प्रोग्राम में हम गीत शामिल कर पाएंगे उतने करेंगे, तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चाहें तो हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, fmgoldaardelhi@gmail.com। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और किसी एक फरमाइश के साथ हाजिर होते हैं।

दोपहर के 3:18 और प्रोग्राम मन भावन आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और फरमाइश हम तक बहुत सारी पहुंच रही हैं। कुछ नाम हैं जो ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे लिसनर्स, सतीश अनेजा, स्वरूप आनंद सरजल, तुलसी मस्कीन, कमलकांत गुप्ता, रिजवान खान, जय निसार अली,

अनिल कुमार गोहांकर, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ही आप मेल भेजें, क्योंकि आप बार बार जब भेजते हैं कई सारी मेल्स तो उसमें किसी और की स्किप भी हो सकती है और वो आपकी भी हो सकती है, तो एक मेल भेजें हमें और आपका मैसेज हमें मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे उसको। अब गीत प्ले करते हैं अगला, और बड़ी ही प्यारी फरमाइश है ये फिल्म जो है, उस फिल्म में भी जीनत अमान थी। देखिए अभी आपने गीत सुना था प्रोफेसर प्यारेलाल से, इसमें धर्मेंद्र के साथ थी जीनत अमान, और अब जो फिल्म है हीरा पन्ना, इसमें भी ये जो गीत फिल्माया गया है इसमें है जीनत अमान, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, और आप कहें तो 70s, 80s, 90s की सदाबहार अभिनेत्री। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा का ये मैसेज है चंडीगढ़ सिटी से, और कहते हैं कि वेलकम टू द प्रोग्राम, नमस्कार सिस्टर, नमस्कार आपको दोनों को भी, और कहते हैं कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसकी मैं सराहना करता हूं और प्रोग्राम को वो और खूबसूरत बनाता है, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लीजिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन भावन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पटेल जिनका मैसेज आया है हमें ईमेल हम तक पहुंची है सुरसंगम हरजिंदर सिंह भाटिया ताज मोहम्मद हरजिंदर शिंदा प्रवीण रनपारा सतीश अनेजा और जॉन डी कैस्ट्रो राधेश्याम शर्मा मोहम्मद फरमान मसरूर हसन स्वर्ण सिंह शमशुल कुमार राही और ये अगला मैसेज है गुरमीत सिंह का बोधराज खुरवाल जगन्नाथ पटेल शाहजी बोधके किशन वंजानी सभी के मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं इसलिए नाम ढूंढना मुश्किल हो रहा है आफताब अंसारी का मैसेज भी हमें मिला है और भूषण खेरा हमारे साथ हैं वीरा मस्कीन का भी मैसेज हम तक पहुंचा है दीपेश वर्मा और ये अगली ईमेल है नवी हसन की सुधाकर जाधव रूपेश संघाई और विजय सुरलकर और नीता का रोहिणी से मैसेज है कुमार सानू की आवाज में प्यारा सा गीत फिल्म परदेश से आपने सुनना चाहा है जरूर सुनिए लीजिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ के रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूं। आप मेरी आवाज बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोपहर के 3:38 हो चुके हैं और आप शाम 4 बजे तक रहेंगे हमारे साथ एफएम गोल्ड पर मन भावन प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आपके हम सफर हूं मैं आपके साथ हेमा खन्ना। और अगली फरमाइश या बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं है ना, सहमत हैं कि कितने ही गीत हम 1 घंटे में 50 मिनट में आपको सुनवा सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते अगले गीत की तरफ। और ये फरमाइश भी बहुत दूर से आई है, कहां से, राजस्थान से, पहचान गए होंगे, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार की ये फरमाइश है। और इनके साथ हमें सुन रहे हैं डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श। और ये गीत आ रहा है किशोर कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी लीना चंद्रवर्कर की आवाज भी है, फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड वन भावन में आपके गीत शामिल हैं जो आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जिनकी फरमाइश करते हैं, और इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं उनके नाम भी लेने बहुत जरूरी है। राशिद हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं, अनंत वाधे भी सुन रहे हैं एफएम गोल्ड, मनोहरलाल गांधी हैं, रविन्द्र मोहन दास, जसबीर सिंह, हीराबन शिंदे, दिग्दर्शन गौड़ और बहुत सारे ईमेल्स आए हैं एक नाम से। देखिए, मैं आप फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तजा करूंगी कि आप सिर्फ एक ही ईमेल भेजें। इस बार शामिल कर रही हूं, लेकिन अगर आपने अगली बार भी इसी तरह किया यानी ढेर सारी ईमेल्स, तो फिर मुश्किल होगा आपका आपकी फरमाइश को शामिल करना। खैर, शामिल करते हैं। इस बार नई दिल्ली से हैं ये, और एक ऐसी गीत की फरमाइश इन्होंने की है जो जब रिलीज हुआ था ये गीत तो हर किसी की जुबान पर था। संगीत ही ऐसा था, आरडी वर्मन साहब का, पिक्चराइजेशन थी मनीषा कोइराला पर, और आवाज थी पुरसोज कुमार सानू की। 1942 अ लव स्टोरी, ये गीत कौन सा होगा आप जानते हैं, और फरमाइश यानी जिनकी वजह से हम ये गीत सुन रहे हैं वो है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु नई दिल्ली से। आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और अब अपनी मंजिल के करीब है। कुछ ही मिनट हमारे पास हैं और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमारे साथ हैं उनके नाम शामिल करते हैं। संजय ढींगिया हमें सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, आर्यन वर्मा, ताज मोहम्मद, शेख मूसा, हरजिंदर शिंदा और फारूक अली खान, जगन्नाथ पटेल के अलावा अकरम हुसैन प्रिंस का मैसेज भी हम तक पहुंचा है और सोनम के अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, राम कुमार रेवाड़, पुरुषोत्तम सिंह, बोधराज खोरवाल, प्लीज एक ही मैसेज भेजें, अब्दुल गफार, एसएम जावेद, रश्मि पांड्या, जय अब्बासी और मैसेजेस रिपीटेड हैं बहुत सारे। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और दिग्दर्शन गौड़। तो अगले मैसेज की तरफ पढ़ते हैं और यह हैं सुधाकर जाधव, शमशुल कुमार राही, नवी हसन, आफताब अंसारी, आर कुमार, विजय बिहारी शर्मा, हीरामन शिंदे और सुरेश नारंग का मैसेज भी हम तक पहुंचा है। अशोक वर्मा जी प्लीज एक ही मैसेज भेजा कीजिए, सुनील गायकवाड़। और चलते हैं आगे, राधेश्याम दीवानगन, धर्मेंद्र छीपा और

0: ये है, नाम इनका क्लियर नहीं है। इनका मैसेज है उदय भान पाल, इतरीस सैफी, संदीप मक्कड़, अब्बासी, रमेश चंद्र कामड़े और हीरामन जी का पहले ही ले चुकी हूं मैं मैसेज, मास्टर खिल्लू परवेज नासिर शेख। तो उम्मीद है मैंने मैसेजेस सब पढ़ दिए हैं और एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आई है, ये गीत बहुत कम प्ले होता है आकाशवाणी पर या फिर एफएम पर, और ये जो फरमाइश ऐसे करने वाले हैं बगेरा दुर्ग से हमारे लिसनर्स जो हैं संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। फिल्म अलग अलग का ये बहुत ही प्यारा सा गीत है हमारी लता जी की आवाज में, सुनते हैं इसे और उन्हें भी याद करते हैं।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

सारे सम्मान और संगीत से सजे इस खास कार्यक्रम स्वारे गाथा में मैं आपकी दोस्त सुबी कपूर एक बार फिर आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूं भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के सबसे बेहतरीन और मझे हुए अभिनेताओं में से एक पंकज कपूर के जन्मदिन की। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम सबों की ओर से पंकज जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं।

1954 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से अभिनय की पढ़ाई की और फिर अपने शानदार अभिनय से फिल्म और टीवी जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, जिनकी आंखों की भाषा, चेहरों के भाव और संवाद बोलने का अंदाज सीधे दिल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आगे पंकज जी के विषय में ढेरों बातें होंगी। वक्त तो चला है कार्यक्रम के पहले नगमे को सुनने का, फिल्म रोजा से SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के युगल स्वरों में।

बचपन से ही पंकज कपूर को अभिनय और रंगमंच में गहरी रुचि थी। उनका सपना सिर्फ फिल्मों में आने का नहीं बल्कि अभिनय की कला को पूरी गंभीरता से सीखने का था। इसी जुनून से उन्होंने पहुंचा देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD। NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने थिएटर की दुनिया में खूब मेहनत की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह वह दौर था जब फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन पंकज कपूर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना डाली। उस समय दूरदर्शन पर 80 के दशक में प्रसारित जासूसी धारावाहिक करमचंद में निभाई शीर्षक भूमिका इनकी सबसे मशहूर भूमिकाओं में से एक रही। तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं फिल्म मकबूल का यह प्यारा सा गीत।

पंकज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आरोहण से की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली रिचर्ड अटेनबरो की ऐतिहासिक फिल्म गांधी से। उनकी अन्य सराहनीय फिल्मों में एक डॉक्टर की मौत 1991 तथा विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित मकबूल 2003 शामिल है। आपको बता दें कि पंकज कपूर बॉलीवुड के प्रसिद्ध युवा अभिनेता शाहिद कपूर के पिता हैं। 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों में उनका अभिनय लोगों को खूब पसंद आया। यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन व्यंग्य फिल्मों में से एक गिनी जाती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं का यह प्यारा सा गीत सुनिधि चौहान और करीना कपूर के युगल स्वरों में।

0: 1983 के बाद वह दौर आया जब पंकज जी ने एक के बाद एक यादगार फिल्में दी। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: गांधी जाने भी दो यारो, एक डॉक्टर की मौत, रोजा, मकबूल, द ब्लू अम्बेला, धर्म, मटरू की बिजली, कमंडोला, साहिद, जर्सी, मैं प्रेम की दीवानी हूं इत्यादि। हर एक फिल्म में उनका अभिनय इतना सशक्त होता था कि दर्शक किरदार को भूल नहीं पाते थे। 1980 और 90 के दशक में इन्होंने कुछ टीवी शो भी किए जो काफी सराहनीय थे, जैसे करमचंद, नीम का पेड़, ऑफिस ऑफिस। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं इनकी ही फिल्म मौसम का यह गीत भूपिंदर सिंह के आवाज में।
1: मिसरा गालिब का है और कैफियत हर एक की अपनी अपनी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है, एक हरकत करती हुई कैफियत।

पंकज कपूर उन कलाकारों में से एक हैं जिन्हें एक्टर का एक्टर कहा जाता है, यानी ऐसे कलाकार जिनकी एक्टिंग देखकर दूसरे अभिनेता भी सीखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है संवाद बोलने का प्राकृतिक अंदाज, चेहरे के भावों से अभिनय करना, हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाना। इसके अलावा कॉमेडी और गंभीर अभिनय दोनों में महारत हासिल करना। पंकज जी कभी ओवर एक्टिंग नहीं करते, इनका अभिनय इनका वास्तविक लगता है। इतना वास्तविक लगता है कि दर्शकों को लगता है जैसे यह किरदार सचमुच हमारे आसपास ही मौजूद है। दोस्तों, पंकज कपूर की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ अवार्ड नहीं, उनकी सबसे बड़ी सफलता दर्शकों का प्यार है। एक बार फिर हम सब मिलकर इस महान अभिनेता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप यूं ही अपनी कला से हमें प्रेरित करते रहें और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिरी नगमे को फिल्म सहर से अदनान सामी और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

संचमान लखथुंगरी कुइकलाओ समेगिन समलो आगेपसुमला अबचे चुरे अला यम्मो अंग खुने ए कुइकलाओ वे समलोस्थिक खेपसुम समलोरे अमित नाथावे पांगबे खेपसुम कन समलो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट प्रसारित हिन्दी भाषामा राष्ट्रिय समाचार। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अब यहाँहरूले सुन्नु

0: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा विशेष मतदाता सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ। 30 मेदेखि 28 जून 2026 बीएलओहरूले घर घरमा गई इनोमोरेशन फर्म वितरण तथा संकलन गर्नेछन्। सबै मतदातालाई आफ्नो फोटोसहित फारम भरेर समयमै बुझाउने अनुरोध गरिन्छ। 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताले फारम 6 पनि बुझाउन पर्नेछ। फारम ईसीआईएनईटी एप वा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ। फारम बुझाउँदा कुनै कागजात वा ओटीपी आवश्यक पर्दैन। निर्वाचन आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
1: श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सुर संसार। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार समय रात्रिको 8:45 हुनै लागेको छ। अब केही क्षणमा यहाँहरूले क्रमशः हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट प्रसारण हुने राष्ट्रिय समाचार सुन्नुहुनेछ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया।

0: शिक्षक त्रिकोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।